जमीन जीता या नहीं रुकेल जी नंगीने अल्लाह जी तब मैं मुआ है रास्त्रम अरंगवने ना मुआ मैं नंगो आप का इल्ल मुआ है इस्तातू 74 आश नंबर वन अल्लाह समुआ जन्दानो भी का न्यू काय काय का पसा मैं जीता नगे गुरे न्यून नगे गु मोनिका में पैसा 5000 को कोई मोनिका तो मिन्योरोगी क्रेस क्रेस कपिसा कपिसा कपिसा अगुनी नहीं तो गया क्या कर रहा हूँ क्रेस आगा इन्योरोगी और लगा इन्हें तो कहीं तक कपिसा का इन्हें गुम रेड कार्ड अगले में तो रे हमु इन अगले बजीता ने तो हमको न्योरनी आया कसे ने न्यू इन्हें ना तो मिन्योरोगी क्या ने देखे शकाय स्टेटस 74 आश नंबर 1 किला मुतुंगा गनिया ही नहीं आको स्टेटस 74 आश नंबर 1 कोते जिले नहीं तो की आमंडाइंग स्टूडियो सिंगे तो बजे मानो मातिंगे तो बस कोका इन्यो ही केरी लगे वे गति के थी तगे ने पाए तो इन्द कासे पेन डॉट को रा पोना सिंगो पोना सिंगो क्वाविंग की क्वातेले स्टेटस 74 आश नंबर 1 कसने न्यो स्टेटस 74 आश नंबर 1 nani atatufungia sokoni kwa pesa status 74 ash number 1 ami wageni kabisa piki mjo agere ole bwanu ndabi ko chito kulko mejera bene pana kila mtu anataka pesa na ni kweli pesa iko isipokuwa mwenye akuchi njapati status 74 ash pasane nyu yes aroni chita ne gure ilari ilari amepata 5000 yake ilari wega aktike titake bwana iwega aktike titake nyoke tesun trapiet kwani ko nini hii pesa ni yako James atom ko nyoni James ka ki ko ja ki nengyo ja ji 5000 ni weka kora ke tesu statu 74 ash ko sene nu labati age togol ne mi yo en labate atom ko labati pesho statu 74 ash labata ko duget number 1 ke ko ni rabene ke te toy 5000 statu 74 ash number 1 upatane na muchele ya 5000 Kikure na ze kelera fsereme nge tu ye betu tap karo ne wene sedeng tetu ti tagena otne baga toro reta gala sunete komalo tu to si ko ba ta fan so laga teng tetu ti no tong ne ba in si ta muge tu menye ga ko itinyu nge go ya tong mugo sege ha ba buta ago yo limba in sa kumina beli jioni